0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Viksit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First Made in India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे-जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग संवाद और विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिए उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान-प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है अपना खुद का वेव्स ओटीटी है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें लोकल आर्ट लोकल संस्कृति लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए अगले

0: 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
0: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं

0: कुवैत ने टेंपरेरी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेजिडेंशियल एरियाज में गिर गया जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइंस पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है विनोद कुमार आकाशवाणी समाचार दुबई
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है एक रिपोर्ट
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी

0: आकाशवाणी समाचार दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया और

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सखियों को सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो
1: और देखिए खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं आपने कौन कौन से खेल खेले, या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
2: आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते हैं?
1: तो इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी, और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
2: भीमव्वा डोड्डा बलप्पा शिलेक्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
2: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब अगर कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
2: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
1: जी,
2: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के इसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
1: जी?
2: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
1: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे।
2: जी हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल, तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं कर्नाटक में वहाँ की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेता जो आपने भी बताया जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है उस माध्यम से उन कहानी को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना, हाँ, उस तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतली

0: कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
1: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं। और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
0: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है।
1: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ की लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
0: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
1: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज़ उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सकें, ताकि जो तोगलू गोम्बे याता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सके।
0: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है।
1: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं, इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है, उनसे जुड़े हुए होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
0: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले के अथारा को भारत का 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
1: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
0: जी,
1: और एक गीत सुन ले अभी।
0: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो डांस है वो देखने में बड़ा मजा आता था।
1: बिल्कुल, और ये अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं। हाँ, तो हमारी एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्रायः विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला
0: वो बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाए कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है। और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं, और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में। आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने, खेल को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है।
1: जिस तरह के खेल में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं, और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना, सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं, और यही वो समय होता है आरती जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं, या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, बहुत सारी चीज़ें।

0: जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: लुका छिपी भी खेलते थे और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा किए, सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
1: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे।

बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना तो बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि होती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है,

0: इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका वह हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं, और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा।

0: जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं और खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई समझाई भी जा सकती है ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं
0: जी,
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं ताकि अब उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल, और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है, हर बार बच्चे के साथ कोई जाएगी जरूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले, तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे, माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं, जब वो साथ मिलकर खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनके उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत।
0: अभी जैसे बारिश का जब मौसम आएगा पेड़ों पर झूले पड़ेंगे तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला कैसे जाता है, उनके साथ बैठ कर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया, तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता जी लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है, बस हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी हम उन्हें भी खेल में बदल सकते हैं।
1: और हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल, जब बच्चों को धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है।
1: बिल्कुल, और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी है कभी कभी,
0: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो चल रही गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश है या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देख के हम लोग साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे, कहते ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव, तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूँ या मैं सही हूँ, वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं तो वहां हमें बहुत सारे एक लाइक मिले।
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
0: वो लाइक कितने बढ़ गए,
1: वो उसी में लगे रहते हैं।
0: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है, बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं, कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े पलों का इंतजार करते रहते ना कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते। तो हर जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
0: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना इस तरह से, उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहाँ जाएंगे तब खुश होंगे, ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रही हैं,
1: जीवन है कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतने दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं

0: तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तकिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी करो और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं।
0: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना।

0: बहुत मीठा बहुत सुरीला गीत हमने सुना और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना। जी
1: बिल्कुल। और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें, क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज़ है हम खुश हैं इसमें, वो चीज होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं। और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत सही बात लिखी है।
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की,
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहाँ वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है।
1: बिल्कुल,
0: ये भी सही बात है।
1: बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने।
0: और भी संदेश है।
1: तो एक और जो मैच होता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अभी तो उसके पोषक भी है, फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं, क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश है, किंतु

0: खुद में खुश रहना एक कला है और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
1: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं, कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने की, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में, एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है। खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। और इसी साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ तो आप सभी की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हमारे श्रोताओं, हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना।

0: बड़ा जरूरी
1: बहुत
0: है
1: जरूरी
0: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ ली हो रही थी बस माचिस की तीली लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक।
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती हैं, जिससे
1: हेयर पिन चाबी ले लेता, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
0: देखो जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है जो मोम जैसा होता है वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीजें हेयर पिन इनका तो कभी ना करें,
1: इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके या जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीज़ें आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना ये पुराने जो होते हैं वो बड्स उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये सब चीज़ें आप ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए, और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज ही आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही,
0: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना है।
1: सबसे बड़ी चीज है आप अगर आपको सुन ही रहे हैं आप उसको बहुत जरूरी है आपको कान में लगाना तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना एक कान में लगा लिए थोड़ी देर आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना कान आपका ऐसे पर्दे पे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए कृपया करके, अपने आप कोई दवाई मत करिए, कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीजें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, अच्छे से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं आज के दिन। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम, मैं शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की, लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेटों में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना
1: जी? इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम
1: जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात तो मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे, बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: अरे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर चलता नहीं था, तो हम लोग ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या
1: खेलने की बहुत चाहत थी, जिम्मेदारी हमारी गुजर गई, जिम्मेदारी घर के आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: वादा

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी, और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो भी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी।
0: पसीना आता है।
1: जी।
0: परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं? आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी, हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते है ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, देखिए बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगी लाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं
1: जी। काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी।
0: कैसा लग रहा है अब आपको, जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी, भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी।
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, आपको याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे, हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, बेफिक्र का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी तक अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम क्या बोलते, सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी साधन का, लेकिन मैंने फिर ढाई महीने छोड़ दिया, यानी दो महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में दसवीं पास करना लोहे के चने जमाने जैसा था।
0: हाँ,
1: पहले से दसवीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे
1: मैंने कसम खाया था कि मैं दसवीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
0: क्या
1: आगे पढ़ना नहीं था दसवीं पास करके, क्योंकि उस ट्रेंड में तो दसवीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गया आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और ईद भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकर सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी। और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने नहीं देती थी दीदी,
0: क्यों
1: लाड़ती थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए आपने पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम था खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम, नमस्कार। विविध भारती
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर में, बारसी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात, हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना, सब पर अच्छा लगता है। आदमी नई चालू करे ना तुम कार्यक्रम, सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश, गीत अच्छे कार्यक्रम है
0: वो। आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता मैं।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: बिल्कुल नहीं का, वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनना है मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से विमल बसुमतारी बोल रहे हो मैम।
0: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ मैम।
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करते हो, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ।
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता है।
0: अच्छा समय रहते घर पहुँच जाते हो।
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?

0: जी मैम, हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा ऐसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ, दुकान और दूसरा है।
1: और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
0: जी मैम, विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
1: कैसा महसूस कर रहे हो?
0: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
1: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
0: जी मैम, आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत भी हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
1: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
0: जी मैम, हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी?
1: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है, हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है कैसा खेल है इसके बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे?
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह की का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए?
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था। और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन जी मैम आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, सिमट करके रह गए हैं बच्चे। लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है, व्यक्तित्व होती है, वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो

0: राष्ट्रपिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
0: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
1: क्या बात है, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसमचारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल, असम की चाय, कौन सी चाय, खुशबूदार पत्तियां?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है, तो बताइए। चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी, फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ, तो दीपक जी और क्या करते हैं, इसके अलावा कोई और शौक है आपकी?
1: मैं खेती किसानी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री, तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है जरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
1: जी
0: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र।

0: DVR, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕು ಸೊಂಡೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಭಜನೆ ಪದ ಕೇಳೋಣ.

आपकी खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत के तराने रात गुनगुनाती है और दिल में उम्मीदों के चिराग मुसलसल जलते हैं। दुनिया के नज़ारे, ये चांद ये सितारे, उसे एक नज़र में समाए लगते हैं, जिनके बगैर सब कुछ बेजार सा लगता है। जब वो आ जाएं तो मौसम बहार आ जाए, कलियों में शोखी, फूलों पे निखार आ जाए।

शाम का ढलना वो रात का इंतजार, गुनगुनाते नजारों में जुगनुओं की कतारें, चांद की मध्यम चांदनी में वो इजहार मोहब्बत, वो शोखी वो कयामत, बातों ही बातों में क्या बात हो गई, पलकें क्या झुकी, किस्से हर रात हो गई।

भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के बाकी नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उनका ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं, इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशियां, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो, सच कहूं तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजनी का क्या कहना।

भी क्या कयामत है, देखते तो इधर ही हैं। वो तेरे नजर का निशाना खाली जाता नहीं, प्यार उनसे भला किस तरह छुपाएं। साज़ दिल पे एक तरह ना दिल ने छेड़ा है, चांदनी रात में ये फसाना दिल ने छेड़ा है।

मचलती घटाओं की गुलाबी रंगत, प्यारे वो पल जब बादे सबा ने कुछ कहा, दिल कहता है आपके प्यार की दास्तान ये सुनाती हैं, कुछ तूफान दिल में मचलते हैं, ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना, तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत में रहने दो, कुछ दिल की कहो कुछ

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर
1: नमस्कार अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है 12 साल एक लंबा समय होता है केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है क्या किसान वाकई में खुश हैं क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनको मामा भी कहते हैं लोग अब आप पहचान ही गए होंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका
2: धन्यवाद आपका
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं गर्मी बहुत है किसान खुश है
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी उनको बहुत बहुत बधाइयां उनका अभिनंदन एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध शक्तिशाली आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला उनको बहुत बहुत बधाई
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी अपनापन ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है सरकार में एक अहम पद पर हैं आप लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है कोई रणनीति की बात करता है भारी भरकम शब्दों की बात होती है ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ
2: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं आत्मवत सर्वभूतेषु और ये भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा अपनापन अपने सहयोगियों के लिए अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है प्राणियों के लिए भी अपनापन और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो वो सुरक्षित रहे पुनर्वास हो इसके प्रयत्न किए जाते हैं अपनापन पेड़ पौधों के लिए इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है पर्यावरण प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है अपनापन नदियों के लिए और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा इसलिए किताब का नाम अपनापन इससे आत्मी और कोई शब्द नहीं मिला मुझे
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको
2: सबके साथ ही मैं अकेला ऐसा नहीं हूं ऐसे अनेकों साथी होंगे जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की और

0: जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग-अलग तरह की चीजें चल रही थी तब उन्होंने फोन करके कहा ना चुनाव की बात ना मुख्यमंत्री से बात अपने शिवराज से बात यही तो अपनापन है
1: शिवराज जी अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते जमाना कहता है एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था भारत को हमारे प्यारे देश को एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे उपलब्धियां कितनी हैं लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें जैसे आपको मामा जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो
0: देखिए एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा
0: 25 करोड़ देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है चाहे धारा 370 हो अयोध्या में राम मंदिर हो विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो कौन सोचता था कि ये दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी कौन कल्पना करता था अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है 12 करोड़ शौचालय बने हैं इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है तो गरीबों का कल्याण हो किसानों का कल्याण हो हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है
1: शिवराज जी आप इतने अनुभवी नेता हैं ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है एलओपी तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगा
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है
1: नहीं वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास दिव्य दृष्टि है ये तो वही बता सकते हैं लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे वो ख्याली पकाओ पकाना बंद करें मुंगेरी लाल के सपने ना देखें
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है मामा सब कहते हैं नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है
0: हम बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे कोई अन्याय नहीं होने देंगे जैसे ही अनियमितता का पता चला धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया परीक्षा निरस्त की गई दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई फीस लौटाई गई अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो सीबीआई को मामला दिया गया अपराधी कई पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं पहले भी पेपर लीक होते थे इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा
0: अंतर ये है कि पहले कुछ नहीं होता था अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की भरने की कोशिश की गई
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा
0: सवाल ही पैदा नहीं होता बच्चे देश का भविष्य है बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा यही सरकार का संकल्प
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब

0: गरीब होता जा रहा है अमीर अमीर होता जा रहा है क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही
1: है तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं
0: नहीं तो हकीकत क्या है इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन
1: हकीकत तो यही जनता जान देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल हकीकत है बिहार हकीकत है दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र कहीं भी आप देख लीजिए हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है
0: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है
1: देखो सवाल ही पैदा नहीं होता वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते
0: नहीं लेकिन अब देखिए अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है
1: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं इसलिए जनता साथ खड़ी है उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं
0: सर लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं
1: देखिए कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था PL480 जैसा गेहूं लाल गेहूं जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था वो हम इंपोर्ट करते थे उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है निरंतर काम राष्ट्रहित सर्वोपरि जनहित सर्वोपरि इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है और चाहे वो देश के विकास का काम हो इंफ्रा का सवाल हो गरीबों के कल्याण का सवाल हो किसानों के उत्थान का सवाल हो नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो या महिला सशक्तिकरण का मामला हो आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं
0: चिवड़ा जी आप तो लगातार ट्रेवल कर रहे हैं मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं अलग अलग जगहों पर लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग
1: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं जनता बहुत समझदार है हर परिस्थिति जनता के सामने है मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं जो कदम उठाए हैं उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है और जनता ये सच जानती है देखिए प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों और अपील की उन लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू थाली ताली दीपक जलाओ अब एक के बाद एक कदम के बारे में सोची जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए जिस ढंग के कदम उठे कोई कल्पना करता है क्या अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है
0: मैंने पता किया मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को
1: तत्काल देखिए मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया

0: के बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं तीन गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए, कि हम भी तीन गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहे। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं, तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम तीन मंत्री एक साथ गए थे।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, एआई नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो तीन बड़े लक्ष्य हमारे, एक देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है, दूसरा पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए एआई का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे एआई के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अल नैनो के भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये एआई का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग हैं जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 97 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की, एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं

0: नेता हैं या सॉफ्ट हार्टेड हैं क्या हैं
1: केवल एक ही घटना मैं सुनाऊंगा एक बार मैंने उनके सामने मैं और वो दोनों थे उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है तो उन्होंने एक ही शब्द कहा मैं प्रशंसा से नहीं मैं काम से प्रसन्न होता हूं जो काम करेगा उसको कंधों पे बैठा के मैं नाच सकता हूं लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता केवल काम पसंद करता हूं और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है काम करो काम करो काम करो चलते रहो चरेवेती चरेवेती चरेवेती अपने देश के लिए काम करते रहो अपनी जनता के लिए काम करते रहो इसी में मानव जीवन की सार्थकता है
0: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरेवती के इस मंत्र के साथ और यही मंत्र होना भी चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत
3: मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है सभ्यता है कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में
4: धन्यवाद
3: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी सभ्यता थी वो उसका पुनः जागरण हो रहा है तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है
4: माने प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता हमारी परंपराएं हमारी ज्ञान परंपराएं उनको हम पुनः स्थापित कर पाए और हमारे जो नागरिक हैं खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके समक्ष ला पाए उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहां से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से भारत की जो ज्ञान परंपरा है अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ

0: हुआ है जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का, हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेन जी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के, नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल है उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप, अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर

0: अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेन जीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम बच्चे थे। और आज जब आप इस दौर में है, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय काम करता है, बल्कि भारत के सभी मिशन्स, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशन्स, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहां भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेन जी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना, सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करें बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: ಇದುವರೆಗೂ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ 12 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಕೇಳಿದಿರಿ.